0: गुलास तुमको भाभी
1: मंदिर निशक तो एक अरे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन ऐसा फाट तुमको फाट से फावांट अकुरे नो दे वोज़ ना नुनुफोन जब अचम शो दिया रिफ़ाज़ेरे नॉन फ़िट एकुंडरा ले तो एक चाइना इकुल क्लून अनफ़से फ़िवेर ना सिंफ़ना स्वसुन अनफ़ा नामे दे यिम मापुती चाइना ना मलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa hiandry amatamboniny hiandry ho tolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika.

0: लाश तुमको वावी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलोजी क्या बोलूँ ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारू जानवे मानो फेरुवना जान जो के इतने दे चारी आरुवना फुट नहीं जो फा आताकुज आजा उन रो सही लांजा इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदितना फालंजा फापुआरी आफाना यंचु मेचर के फावे निफिशीना फालंजा फापुआरी ते चफानेरीना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनान्फ